एक महल ने मानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बकता एक महल खल होता एक महल तू सब किश ग्राहज एक महल।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

रिद सिद्ध बुलावों, ताज कुल है सिर छतर बनावों, बिन जगदीश कहां सच पावों, खान मलूक कहावों राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

सी अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, ना मोह भूले जम का दुख सहना। मैं तर नाम ज्यों रख हो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम। शाह मरे संचह माया दाम, मैं तन दी जय हर अमृत नाम।

चालहि गुरमुख हुकम रजाई, रहहि अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोह रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रहियै, निज कर बैस सहज कर लहियै। हर रस माते इहो सुख कहियै।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं भ्रमणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वस्या सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न

सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कब है न जाए जिचर शब्द ना पीजै हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मो आकार मर मर जम्मै वारो वार। सूतक अगन पौणै पानी माहे सूतक भोजन।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझहो सदा सुख होई।

बहुत अभिमाना बग ज्यों लाए बहै नित ध्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई।

पारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोह नत बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी।

मोह अत परम पुलहाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेव है से बड़भागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

खाए, जम डंड सह है सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

कहलई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को बिरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै।

गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर पाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला बड़ भागिया हर एक

पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना। सहज

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करणे हार पछाता तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख डंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक है।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहरै।

परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मह आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया।

सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ही जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

आत्मघाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ कह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राग गौड़ी पूर्वी शांत महला पहला मुंदरे

समाणिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम फिर रावे हा गुर पुछ लिखोंगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निकस जाता रह आसिर जाम सच पछाणिया।

प्यारे अहंस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे साधन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिले।

जियो गुर पुरख बिधाते, पुरखो बिधाता एक श्री धर। क्यों मिलहै तुझे उडीनियां, कर करहै सेवा शीश चरणी।

आप रहया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तु

सागर निमख सिमरत साधिए कल मलह दहता शुद्ध करता दिन सुरैन अराधो बिनवंत नान।

तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

या जुगमह एक कह कौ आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना देवनहार मन है बिसराना। तार हो कृपा जिस है गुसाई।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपा।

हे पौड़ी कग्गा काल हो मन है एहे बिन हर दूसर नाहे नह होवा नह होवना जत

जज्जा चूरन मिटै तुम्हारो राम नाम स्यों कर व्यवहारो चूरत चूरत साखत मुआ जा कैर दै होत पाओ बिया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत।

हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

अखर महंत्र पवन प्रभ तहारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा,

सज्जन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरुद्धरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव

अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ काल कलेश तन माहे मिटावाओ सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखे।

सन दसना प्रभ कौ सिमरह से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा अविना

अष्टपदी जह मात पिता सुतमीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमा है उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख

निर्मल कर्म सगल क्रिया महे उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम महे उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी महे अमृत बानी हर को जस सुन।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावहें हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास

पदी मानुख की टेक बिरछी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुख कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहु कछ ना दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत

अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भूख

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्ब कला आप है परवीन, तह वेद देव कहां को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहां बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अभेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त।

श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

महो विशास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन।

तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे भाव है जो तुद सच सलाहंदे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे तिन के मुख दर उजले।

सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे, भगत मुखे ते बोल दे, से वचन हो बंदे।

हर वस्त संभाले, नाम निधान हर बन जीए, हीरे पर वाले, विनकाया जे होर थै धन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ भरम पवाई है, ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा

जवान अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे भुख नानक सच्चे नाम बिन किसै न लथो दुख। महला पंजवां।

सुख हम हो ना मांगे आप हवे बिख्या अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म नराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादिक नारद मुन शेखा तिन पी तन मेहमान नहीं देखा इस मन को कोई खोज हो पाई

पेल गुरमुख निर्मल रह प्यारे ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनो कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

संतापी दुर्मत त्याग लाहा किशले वहो जो उपजाय सो अलाख अपे वहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

रहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, तीरज धड़ी बंधावे कामण, श्री रंग सुरमा देई।

अघ कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद कन्हा गुर सेवा ते पहे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

शगुन अपशगुन तिस को लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना।

अर्थ ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना पाना तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

प्रतिशक्षके गुरतुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत।

अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बो

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहा।

ब्रह्मत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बेख काम लुभ राता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ बेख फल मी

जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया त्रिप्त अगहन मुक्त पय जोत समा

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तार।

गुरमुख ज्ञान सहज तुन उपजाए, सच नाम चित लाया गुरमुख अनदिन रह रंग राता, हर का नाम मन पाया गुरमुख हर वेख है।

खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

तीरल ये जो हर प्रभ का मैं देस नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

जन्म गवावहे। एक मूढ़ मुगदना चेतह मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाणा तेरा।

सदा सुख बसहि, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

राम हर हर सतगुर करहे भक्ति जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम।

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल देहथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

मिल है। जे सतगुर लाग है साचे पाए, सतगुर सदा दयाल है। अवगुण शब्द जलाए, अवगुण शब्द जलाए, दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सच राती, सच्चे शब्द सदा सुख।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेसिया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन जिन हर हर नाम दृढ़ाया, सो सतगुर पूजह दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख।

संत हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहणे गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।